शांति शांति शांतिर्भवतु। अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। Blessed self, dear bhaktas, spiritual

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

वनम सजति सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

त्रिगुणरहितं सतगुरु तं नमाम्यम्। ओम शांति शांति शांति। सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट। आवर डिवाइन एडोरेशन टू अलखपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा। आवर हम्बल प्रेयर्स टू गुरुदेव। डियर brothers and sisters round the world, wherever you are, many blessings. Today is the day where the human begins to think more spiritually.

मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा बाई से नो बॉडी नोज माई पेन, नो एनी डॉक्टर्स कैन क्योर मी, नो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कैन क्योर नो वन. डे बाय डे आई एम गेटिंग फेल एंड फेल लाइक द ए लीव ऑफ द ट्री इन ऑटम. ओ लॉर्ड, ओ कृष्णा, व्हेन ओनली देयर इज वन ट्रीटमेंट, व्हेन यू कम एज माय डॉक्टर, अदरवाइज प्यारे मेरा दर्द न जाने कोई. विरह की मारी बंद बंद डोलू, विरह, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायर, अग्निस, द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट अनप्लेजेंट एंड मोस्ट प्लेजेंट इज अ विरह अग्नि. विरह मीन्स लॉन्गिंग इन द हार्ट, एंड वेन दैट इज वैराग्य इज देयर, देन यू हैव द विरह. वेन यू लॉस्ट द वैराग्य, देन भक्ति इज गॉन, देन दैट विरह अग्नि इज फिनिश्ड, यू लॉस्ट अगेन, फॉग केम एंड यू डोंट सी एनी मोर वे, यू आर स्टक देयर. सो वैराग्य एंड भक्ति, देन ज्ञान विल ऑटोमेटिकली गाइड अस. सो शक्ति भक्ति एंड वैराग्य. शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, ब्लेस मी विथ शक्ति भक्ति एंड वैराग्य, दैट्स ऑल. इफ वी हैव नॉलेज और नॉट विद अस, दैट डजंट मैटर, देन ही विल टेक केयर, ही विल लीड अस ऑन द राइट वे. And when this is lost, everything is lost. The night, she said, Divashana Bhuka, rare in the Nidra. Daytimes, I can't eat. My appetite is gone. It's burning only here, eating me. My viraha eating me. Divashana bhuka. Raat nahi nindra, naina nahi nindra. In night I can't sleep. My bed is like the needle bed, like a fakir. That is called longing, and she will get, Krishna will come to her. But we will wait one day, 2 days, 1 month, 1 year. If it doesn't come, okay. That's okay. That's not okay. Ye dhoke hai. That means cheating. Your inner self saying okay is cheating you. And God want to know, you know the story of that bird and that man who was lying and waiting and saying, Kaga sab tan khayo, chun chun khayo maas. Magar do nen mat khayo, piya milan ki aas. O Kray, eat my whole body, each and every piece of flesh from my body. But please don't eat my two eyes, both, because still I hope to see my beloved. God. Where do you project a God? And so, when Swamiji came, Bodhananji Maharaj, who was a disciple of Mahaprabhuji, and he introduced Guruji. So, that time, Mahaprabhuji was in Jodhpur, and the Jodhpur Maharajas invited him to make a Chaturmas, 4 month of the seasons we stay and give satsang. And Guruji was running, going there. Young man, young boy, 16, 17, 18. And it was the evening, around 7 o'clock or 8 o'clock, there was satsang. And Holy Guruji was coming, walking, very tired. He walked.

सब कुछ देख कर रोई, उसे कुछ भी नहीं मिलता, दे डोंट गेट एनीथिंग। मिलेगा भी तो देगा खोई, इन केस ऑफ केस इफ दे गेट समथिंग दे विल लूज इट दैट ऑल्सो। पुरुषार्थहीना प्राणी सब कुछ देख कर रोई। पुरुषार्थ नाम, पुरुष नाम पुरुषार्थ का, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पुरुषा, डजंट मैटर मेल और फीमेल ह्यूमन। पुरुष नाम पुरुषार्थ का पुरुषार्थ करने से सिद्ध हुई, नहीं सॉरी, जो है देव के भरोसे वृथा जन्म गमाए। देर आर सम पीपुल, गॉड विल गिव मी एवरीथिंग एंड यू गो एंड बेक पूजा हियर, यू गो पूजा, गॉड विल गिव एवरीथिंग। व्हाट विल गॉड गिव एवरीथिंग? जो है देव के भरोसे वृथा जन्म गमाई, दे विल लूज देयर चांस। देव नाम है पुरुषार्थ का, सो गॉडेस मीन्स द पुरुषार्थ, द वर्क, गुड वर्क, पॉजिटिव वर्क करने से सिद्ध होई। इफ यू विल वर्क देन यू विल गेट इट। सो दैट इज तुलसी ब्यूटिफुल भजन ऑफ द अच्छो राम जी, ब्यूटिफुल भजन। देयरफॉर गॉडेस आर दे हु वर्क गुड, ही डिड गुड टू एवरीवन, हर्ट नो वन, इंस्पायर्ड एवरीवन, लीड एवरीवन इन द स्पिरिचुअल पाथ, not misguide them from the path, not create jealous or doubts, then you go to the rakshasa in the lower lokas. Deva. And this devata said, finally, let me come please to the human life, that I can again this practice and get the mokshas. So, finally, there will be then Mahapralaya. But not maybe end of the Kali Yuga, no. We don't know when. There are many, many Satyugas. And many times the Shiva himself came. Which Shiva are you telling? The king of the Himalaya, Hemraja, or the Shiva? The king of the entire Himalaya range and this all, which was also more than half the India, north side, the China, this all, that was the great ruler, the kingdom. And his seat was in Himalaya and Kailash. And Parvati also Hemraj, the king's daughter, Ganga and Parvati. But Swayambhu was different. Swayambhu was ruling from the Kailash mount, and they, Hemraja was the whole ruling there. So this is another story we are going there. When Mahapralaya is that, it means the entire earth will be destroyed. That time, before this destruction comes, all bhaktas will automatically will be rescued, brought in the Brahmaloka, in the Shiva consciousness, in the divine light called Shiva Jyoti. Shiva Jyoti, yes. That will flow into the that divine river called Yamuna, Ganga, Narmada, Saraswati, Ganga, Gita, Chagayatri, Sita, Satya, Saraswati, Brahma Vidya, Brahma Vali,

0: सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, मात पिता गुरुदेव की।
1: हरिओम।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम अनित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षीभूतम्

ओम कारबिंदु संयुक्तम नित्यदायंत योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओम कराय नमो नमः।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा प्रेम करुणा दया यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वीदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delhi Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delhi Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delhi Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Delhi Life
1: Yoga in Delhi Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Delhi Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर
1: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों 84 लाख जोन के अंदर है, जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारतखंड के अंदर बनेंगे।

84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख ईट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना गलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे। ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान वो

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या? जब परमात्मा की कृपा होगी जो

0: come a little back. Thought of. मेरे पप्पी से आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा. और मास्क निकाल दो. साइड करो स्लो. थैंक यू.
1: श्री दीपनारायण भगवान की जय. देवेश्वर महादेव की जय.
0: थोड़ा दूर है.
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma Parameshwar. Om.

0: पूज्य पाद अनंत शिव भूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: जय।
1: श्री सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय। विश्व गुरु महामंदरेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्ध परंपरा की जय।

भगवान की जय। सिद्धेव पुरुष महादेव की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलका पुरुष महादेव की जय।

भगवान की जय। श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो। जुगा जुगा।

0: बोले श्रीदीप नरयाम भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय।
1: गुरुदेवा की जय। श्री मीराबाई जी की जय।